0: और बजट में 3 गुना इजाफा किया है।
1: आज यूपी के इन 1375 परिवारों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया है। हमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जो आज से 10 वर्ष पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, उस राज्य को हमें देश के अंदर सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में मदद की है।
0: प्रोग्राम में देही तरक्की पर एक खसूसी मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में माली साल 2026-27 के बजट के इंतजाम, माली मंजूरियों और हकीकी अखराजात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि मालियाती मंजूरी बजट की दफात के मुताबिक जारी किए जाएं और अखराजात की रफ्तार तेज की जाए। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि 70% मालियाती मंजूरी अगले 2 माह में जारी की जाए और कुल मुख्तस बजट कम अज कम 60% खर्च किया जाए। रियासत की देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए वजीर आला ने बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर अहल किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा हासिल करना चाहिए। मीटिंग के दौरान जनाब योगी ने यह भी हिदायत दी कि देही इलाकों में कर्ज की दस्तियाबी को बढ़ाने और बैंकिंग निजाम को मजीद मुअसर बनाने के लिए देही क्रेडिट कॉन्क्लेव जैसे प्रोग्रामों की मंसूबाबंदी की जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। ये उनकी गैर मुतजलजल लगन और लोगों की खिदमत के जरिए कौम की खिदमत के मंत्र से वाबस्तगी से मुमकिन हुआ है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विजन से चलते हुए हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए एक अनथक मेहनत कर रही है। लगन शमूलियाती तरक्की और समाजी बाख्तियार बनाने के जरिए लोगों की जिंदगी को बदल रही है। आज हमारी खसूसी सीरीज में हम नमो भारत रैपिड ट्रेल के बारे में बात कर रहे हैं।
2: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
3: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
2: यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हिंदुस्तान आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं बरसी मना रहा है, जो 18 सितंबर को उड़ी दहशतगर्दाना हमले के बाद किया गया था। 28 और 29 सितंबर 2016 के दरमियानी शव फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन किया था। यह ऑपरेशन जिसमें 18 भारतीय फौजी शहीद हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शहीद भगत सिंह की यौम पैदाइश पर रियासत के लोगों के लिए खत लिखा। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इल्म और अज़्म के अमल के साथ जोड़ें। वजीर आला ने लिखा कि नौजवानों को जात परस्ती, मंशियात की लत और दीगर समाजी बुराइयों पर काबू पाने के लिए भगत सिंह की जिंदगी से तहरीक हासिल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलसल मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। हमारे नामा निगार ने बताया कि मौसम की खराबी के बाइस कई अजला में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
4: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

1:16 का वक्त, और आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में आपके दिल से जुड़ा हुआ एक सवाल हमने किया था, भी आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या खास करते हैं, और आपके हिसाब से किसी के चेहरे पर स्माइल बिखेरना इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने इनपुट दिया है। हम शुरुआत किसकी मेल से कर रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास मेल आया है किसका, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरा नाम शिवेक चौहान इटावा से। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं एक टीचर हूँ, मॉर्निंग में स्कूल जाते वक्त FM रेनबो सुनता हूँ और लौटते वक्त होठों पे तेरी बात प्रोग्राम डेली सुनता हूँ। ऑल राइट, इन्होंने लिखा है कि कुछ किसी कारणवश किसी और फ्रीक्वेंसी पर मुझे 100.7 सुनाई देता है, ऐसा क्यों हुआ। ओके, देखिए कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, 100.7 ट्यून इन करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल ट्यून इन होगा। अच्छा शिवेक जी, मैंने आज जो टॉपिक रखा है ना, उस पर भी अपने इनपुट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। हमें रामराज जी का मेल हमारे पास आ गया है, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से। आपने लिखा है कि शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है, मुस्कान ऐसी चीज़ है सभी के चेहरे पर रहती है, अगर कोई दोस्त या कि घर का कोई भी सदस्य नाराज़ हो तो कोई ऐसी बात कह दो तो दिल खुश हो जाता है और मुस्कान ज़रूर आ जाती है। ओके, मतलब आप ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया अनुज कुमार जी का, श्याम नगर पतूल की बाराबंकी से। इन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है तो उससे खूबसूरत काम कोई नहीं। मेरी खासियत है कि मैं अपने शब्दों और बोलने के अंदाज़ को इस तरह बदल लेता हूँ कि सामने वाला अगर उदास हो या रो रहा हो तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। बात चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मैं अपने अंदाज से माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा अंदाज है, शब्द सटीक, बात दिल से और कोशिश हमेशा किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की रहती है। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें। नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है नाजिम उस्मानी जी का, महमूदाबाद सीतापुर से। इन्होंने लिखा है, कॉमेडी करके मुस्कान ला देता हूँ मैं। अरे वाह, बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल क्रिस्प सा जवाब आपने दिया है। ऑल राइट, महेंद्र देपन जी का मेल हमारे पास आया है, राजस्थान में ये सुन रहे हैं, रहने वाले नागौर के हैं ये। आज होठों पे तेरी बात में आपका सवाल सुनकर लगा कि आज तो मुस्कान का हिसाब किताब ही पूछ लिया। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, बस मौका मिलते ही प्यार से दो बातें कर लेता हूँ, किसी की तारीफ कर देता हूँ, ज़रूरत हो तो मदद कर देता हूँ, और कभी कभी ऐसी मस्ती कर देता हूँ कि सामने वाला हंसने लगे। मेरे हिसाब से मुस्कान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई हर दर्द का इलाज नहीं कर सकती, लेकिन किसी की सच्ची मुस्कान कई बार दिल का दर्द ज़रूर हल्का कर देती। वेरी ट्रू महेंद्र जी, और मेरी तरफ से दो लाइनें इन्होंने लिखी हैं। ऑल राइट, चेहरे पर मुस्कान रहे तो ज़िंदगी हसीन लगती है, खुशियाँ बांटते रहो दोस्तों, यही तो ज़िंदगी की असली कमाई लगती है। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें। नेक्स्ट मेल आसिफ अंसारी जी का, हैदराबाद तेलंगाना से। अच्छा ये हैं और अभी नागपुर में हैं, सफ़र में हूँ मैं, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए छोटी छोटी बातों का खास ख्याल देता हूँ। जैसे कि कल जब हम बाराबंकी स्टेशन पर थे तो दो लोग भी वहाँ थे, उनके पास बैग बहुत भारी था, तो हमने उनके बैग को और उनको ट्रेन में चढ़ाया। वो बहुत खुश हुई और दुआ भी दी। मैंने उनसे पूछा, आपके बेटे नहीं आए, तो उनका जवाब था कि हमारी एक लड़की है, हम उसी के घर जा रहे हैं। सो स्वीट। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास किसका आ गया है, कुलदीप गुप्ता जी का मेल हमारे पास आ गया है। इन्होंने लिखा है, उधौली बाराबंकी से मेल किया इन्होंने हमें, हंसकर अपनी खुशी का एहसास व्यक्त करने की कला सिर्फ मनुष्य के अंदर है, जो अगले व्यक्ति को ये महसूस कराता है कि सामने वाला इंसान आपसे बहुत खुश है। जैसे झगड़े का कोई कारण नहीं हो सकता, वैसे खुश रहने का भी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो सकता। हम किसी भी बात पर और

किसी समय खुश, किसी भी समय खुश हो सकते हैं और अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ला सकते हैं। एक कहावत भी है कि किसी को इतना ना गुदगुदाओ कि वो हंसने के बजाय रोने लगे। अपनी तरफ से खुशियों की बयार बहाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ, सुरों का लखनवी एहसास। थैंक यू। ऑल राइट, कुलदीप जी का मेल बड़ा ही टेक्निकल और बहुत ही बेहतरीन था। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक का। तो इस टॉपिक पर हम आपके इनपुट्स अभी भी इनवाइट कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल आपके दिल से जुड़ा हुआ है। आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या खास करते हैं और आपके हिसाब से किसी के चेहरे पर स्माइल बिखेरना इतना ज़रूरी क्यों होता है? तो बस इस टॉपिक पर अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।

देवी की तरह पुकारते आए वह हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी है। सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से

ऐ दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान। वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म, और हमारे एक साथी कह रहे हैं मधुमति फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी, ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलिल चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजादी के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी, लेकिन काफी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता, जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में, लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है। और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

0: 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
1: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
0: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सच भारत की युवा ना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
0: किसका?
1: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: दीपावली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते, समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
5: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
4: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी, मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था और लेख में भी सादे

0: और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
1: आज तो दिवाली है।
0: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
0: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
1: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
0: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हां,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।

0: वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबी रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कोई सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी।

0: गिरिजा, राजुल अशोक, पंडित देवदत्त, जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास, जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: अभी पहली कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
2: बिल्कुल ऐसा है, मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
1: और अभी क्या सुनेंगे?
2: एक गीत सुनेंगे
1: जी।

0: जाता है और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना।
1: तो ये तो बिल्कुल
0: इतनी
1: कंप्लीट थाली हो
0: खुशबूदार
1: गई
0: है
1: ना,
0: ना।
1: खुशबूदार,
0: हाँ
1: मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी एक
0: खुशबू
1: खुशबू सी
0: आने
1: आ
0: लगी
1: रही
0: है।
1: है।
0: अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है।
1: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
0: हाँ

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजे हैं और हाजिर हैं आपकी सेवा में।

0: जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद हम आपसे दूर रहे, लेकिन तमाम परेशानियों को दूर करते हुए, समस्याओं का निदान करते हुए एक बार फिर हम आपके सामने हैं, आपके सामने लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम, आपकी पसंद अनुरोध गीत भी है। तो पहले आपके लेटर से शुरुआत करेंगे, और मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव, हमारे साथ हैं शीशपाल जी। हाँ
1: नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं हम, और शुरू करते हैं आपके पत्रों का सिलसिला। ये हमारे श्रोता हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बागवान का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं सुदेश भोसले और अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत निर्देशन आदेश श्रीवास्तव का।

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं। आप सबकी दुआएं हैं कि हम तमाम समस्याओं से जूझते हुए उनका समाधान निकाल पाए, और आप सभी श्रोताओं का प्यार है। आप सभी श्रोताओं का प्यार जब ये पोस्टकार्ड के रूप में हमारे पास है ही, तो बताइए आखिरकार कैसे हम समस्या से ज़्यादा देर तक जूझते रहेंगे, समाधान मिल ही जाएगा आखिरकार। तो वही एक बार फिर हम आपके साथ हैं और आप सबकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। तमाम पत्र भी हैं और पोस्ट भी डाल दिया गया है, और आपकी पसंद और भी ढेर सारे प्रोग्राम जो भी चलते थे वो फिर से आपके सामने होंगे, और ईश्वर की कृपा है, गणपति महाराज की कृपा है, तमाम लोगों की कृपा है जिससे वजह से हम लोग शुरू कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। तो लीजिए फिर से आप सभी श्रोताओं के हम पत्र पढ़ते हैं। तो शिषपाल जी पढ़िए जी, किसका पत्र है?
1: ये हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमारे नियमित श्रोता हैं सर।
0: जी जी।
1: मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौल और मोहम्मद शादाब खत्री। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कमांडकर, सरिता कमांडकर, प्रिंस एकांश कमांडकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत कमांडकर, प्रणीता, अर्जुन कमांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश कमांडकर, सुमित कमांडकर और ध्वनि कमांडकर। और आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और ये हैं हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। और ये पत्र आया है, बहुत सुंदर सा पत्र है सर, देखिए प्रिंट किया हुआ है
0: जी।
1: सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्तबा, आफिया।

राउफ और शहीद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता नारायण भाव खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती, स्वाति प्रयाग चौधरी और आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म जब भी मैट का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है मोहित चौहान ने। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत निर्देशन प्रीतम का। आइए सुनवाते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म जब भी मैट का ये गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर। आप हैं शांति विहार बरेली से अमर मिश्रा, सत्या कुशाग्र, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम, नूरजहां, डब्लू अक्रम, वली अक्रम, उल्ला अक्रम, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, गांव लाहौटरा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने, गीत के बोल नीरज के हैं, संगीत निर्देशन SD बर्मन का। आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, और इसी के साथ में है कार्यक्रम आपकी पसंद भी। और कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर नगर पंचायत फरीदपुर बहेड़ी से पवन कुमार, संगीता राजपूत, कविता राजपूत, धर्मा देवी और साक्षी राजपूत। आप हैं जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। ग्राम रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से हमारे नियमित श्रोता राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविन्द्र वर्मा, सोमपाल, तेज प्रकाश, शशि कुमार, नथुलाल वर्मा, नंदगी सिंह वर्मा, विवेक और हिमांशी वर्मा। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, दानिश अंजान, बाबर आजम, बाबर अजीम, अनाबिया और हमजा। और ये पत्र हम तक पहुंचा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित और साहिल कांगड़ा का। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। आप हैं शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा, आफरीन, असलम। और मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी, रचना, एकता, कुमारी दिव्या, ममता, ओमवती, भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। और ये हमारे श्रोता हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, नुजहत फातमा, अबरार अहमद, इकबाल अहमद, इसरार अहमद, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म शोर का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीत के बोल इंद्रजीत के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, हम्मद और अरिबा हबीबा, और ये हमारे श्रोता हैं सोहेब शान, और आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजबा अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी, असल गांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे का जानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे, संतोष एस काले जी और प्रकाश दांडगे जी, और आप हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान अफजाल, मोनिश सादिक और आपके मम्मी पापा, गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव, सोना यादव, और ये हमारे श्रोता है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनौली और सोनम, साथ में आशीष विश्वकर्मा, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, और आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता दिनेश और करुणा वर्मा, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर कटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म 10 लाख का ये गीत जिसको गाया है कृष्णा काले और साथियों ने। गीत के बोल हैं प्रेम धवन के, संगीत निर्देशन रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, टिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र खुराना, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। और आप हैं कोल सिटी बरका काना से अफजलताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और अफजल मलिक। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। आप हैं पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह प्रखर, कुशल, नीति, सुरवी, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। आप हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। और ये हमारे श्रोता शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना और अली अंसारी। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और वेदा वंडलकर। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म आरजू का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हंसल जयपुरी के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: भाभी ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है।
1: बाजरे की पकौड़ी है।
2: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
1: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
0: अच्छा भाभी,
1: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
3: श्री अन्न अपनाएं, स्वास्थ्य बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। आप हैं ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर सिंह और ये हमारे श्रोता टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, ततरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा। और आप हैं बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, ही रामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने। आप हैं सभी ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी और मंसूर क्लब ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से। सकावत हुसैन मंसूरी, ताले हुसैन, तौफीक, मोहम्मद नवी, सकूर अहमद मंसूरी, सुनील रस्तोगी, विकास श्रीवास्तव और आपके बहुत सारे साथी। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई का ये गीत जिसको अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद है यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नारी संसार। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा 6 बजे। हमारे ग्रामीण साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी विश्व रेबीज डे पर। साथ ही सुनवाएंगे आपको क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोकगीत। अक्षयवट, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7 बजे से। अनुरोध गीत, श्रोताओं आपके पत्रों पर आधारित आपका अपना कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे 7:31 पर। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

8:45 का समय रहेगा लोकगीतों का। सोशल मीडिया पर आधारित आपकी फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 10 बजे से। कल दिन के 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 1 बजे से।

कल दिन के 11:15 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम झुमका किरारे। गजल, कव्वाली और लोकगीतों का कार्यक्रम रसरंग प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 2 बजे से। कल शाम 4 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। 5:05 पर आपको सुनवाएंगे भजन संध्या। महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6 बजे से। हमारे किसान साथियों का मनपसंद कार्यक्रम किसानवाड़ी होगा कल शाम 6:30 से। 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का। श्रोताओं, यह था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या।